0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल or protected.
3: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Catch the legend, Ravi Sharma, every weekday morning at 9 a.m. Leica.

0: This is Laika Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दुआ

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्सियों पर

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख मलेच्छ मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जोर ना जुगती छुटाए संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: This is Leica Radio across the Midlands. This is Leica Radio across the Midlands.
1: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
2: I'm Greg Edwards. So far this morning on the motorways, traffic's looking good. It's all flowing well on the M6, both north and southbound. Fine as well on the M42 and the M69. On the M1 southbound, it's flowing well for the time being through those ongoing roadworks by Leicester Forest East Services. Lane closure still in place there for several more months. Off the motorways in North Kilworth, the B5414 Pinsett Lane is closed for roadworks, so traffic's diverting between the A4304 junction and Bosworth Road. Traffic around Belgrave is on the move, and the same around Aston. Travelling in Dudley, Stourbridge Road is closed westbound for repairs. And that's your latest traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by Ohamnava Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू. और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लेस्टर LE54UN.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
9: साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 0208574 8410.
9: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
11: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203776333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
12: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
13: દોસ્તી મસ્તી અને ઇમોશન્સ ની એક અનોખી સ્ટોરી.
14: સામડે એક કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ.
15: નાખતા જઈએ એટલે
13: સોલ સૂત્ર પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક.
16: તું ગાંડો છે આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર.
13: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Releasing Friday, 25 September. UK release details mate, Instagram par follow karo Bakrania Media.
17: You know how fans shout at football matches?
18: Oh, wake up!
17: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: From Dudley to Aston, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Back-to-back hits across the Leica Radio Network.

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ई जुल

0: sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Very good morning. Aaj ki mausam ka zikr kare. Well, 22 degree Celsius, halki hawaein aur bhai din ki shuruaat wal thodi si badalon se dhari dhaki hai lekin सूरज की चमक दमक होगी. मौसम खुश्क रहेगा. बारिश की आशंका नहीं है. हेजी एट टाइम्स ड्यू टू बैंड्स ऑफ हाई क्लाउड्स. रात को भी जो है मौसम सेटल्ड नजर आएगा. मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 22 और मिडलैंड में 21 रहेगा.
0: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: good morning. Welcome to the world of entertainment. बृहस्पतिवार थर्सडे सितंबर महीने की 24 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का। और बहनों भाइयों दिन के साथ जुड़ी कुछ बातें कुछ इतिहास से लेंगे कुछ महापुरुषों के जीवन से। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरा नाम है रवि शर्मा, मेरा काम है आपका दिल बहलाना। लेकिन साहब लोगों को खुश करने के चक्कर में कभी कभी आप लोगों को नाराज भी कर बैठते हैं। बस इसी बात पे यारों को खफा रखा है, अपना अंदाज जरा उनसे जुदा रखा है। रात ने अपनी हकीकत को छुपाने के लिए अपने दामन पे सितारों को सजा रखा है। अरे उनको क्या खाक सजा देंगे जमाने वाले, जिनको एहसास ने सूली पे चढ़ा रखा है। लोग इंसान को दामन से झटक देते हैं, हमने तो पत्थर को भी सीने से लगा रखा है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Leica Radio network.
0: वो हमें मिले ना मिले उनकी मर्जी, हमने तो उनको अपने सीने से लगा रखा है।

0: तो भाई ऐसे होती है धमाकेदार शुरुआत मनोरंजन प्रोग्राम की लाइका गोल्ड पर, लाइका रेडियो नेटवर्क के इस भाई रेडियो पर। और अब आज के दिन का इतिहास देखते हैं, देखते हैं कि आज किसका जन्म हुआ, किसकी बड़े आदमी, किसी व्यक्ति की, महापुरुष की पुण्यतिथि है, या फिर आज कोई ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र जरूरी हो, ये सब देखते हैं। और आइए बता दूं आपको कि 10:30 बजे के आसपास आप आज के प्रमुख समाचार सुनेंगे। 11 बजे अंग्रेजी में खबरें होंगी और उसके बाद होगा थॉट फॉर द डे, आज का विचार जिसे हम कहते हैं चिंतन। और बहनों भाइयों, दोपहर बाद 1 बजे तक हमारी आपकी ये मुलाकात जारी रहेगी। आज है 26 सितंबर, भारत की भाई स्पेस यान ने जो है मंगल ग्रह पर प्रवेश किया था और पहली ही कोशिश में वो कामयाब हो गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। इसरो को बहुत बधाइयां मिली थी, आई थिंक सन 2013 या 14 की बात है, मैं देख के बताऊंगा कि ये एक कारनामा किया था भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, कि अपनी पहली कोशिश में, किसी और देश से ऐसा नहीं हुआ था, भारत ऐसा पहला देश था जिसने अपनी पहली कोशिश में अपना जो है स्पेस यान उसमें मंगल ग्रह पर पहुंचाया था पहली बार में। और इसके अलावा भाई आज के दिन के साथ जुड़ी कुछ और बातें भी करेंगे, जिक्र उनका आगे चल करके। पहले देखें आज SBI UK £1 के बदले कितने भारतीय रुपए दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 126.6 इंडियन रुपीज फॉर £1, 126 रुपए और 60 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो, लाइका
3: रेडियो, क्योंकि सांस भी कभी।
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी, एवरी डे एट 9 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमन बटर 20 kg सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
7: इट्स बैक, इट्स बिगर एंड बेटर।
8: ZTV एंड लाइका रेडियो प्रेजेंट्स द लेस्टर दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल,
9: powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
10: Join us on Sunday the 1st of November from 12 PM up until 8 PM at the Ram Gurya Centre in Leicester, with shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
9: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
10: For store bookings, call 07803 240580
9: or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 6333 or visit mantraholidays.co.uk. Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
13: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
12: Adults £30, children aged 5 to 12 just £15 and under 5s go free.
13: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
12: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner Leica Radio.
14: Your Dubai property journey starts here.
15: With a special 3-day offer from Danube. Pay just 20% at booking. Danube pays the next 10% and you pay the remaining 70% on handover.
14: Available across all projects, Friday to Sunday only. So is mauke ko miss mat kijiye. Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo, September 26th and 27th.
15: 10 a.m. to 8 p.m. at Marriott Hotel Smithway, Leicester. LE19 1SW. Discover greens, breeze and shahrugs. Explore your options and meet our team for prices, availability and bookings.
14: Aaiye, apni Dubai property journey shuru kijiye. No additional discount.
15: Terms and conditions apply.
16: Aapka naya station, Leica Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
17: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

तुमसे जुदा। असद भोपाली का लिखा गीत, उषा खन्ना का संगीत से संवारा गीत, मोहम्मद रफी साहब के स्वर में आपने सुना ये गीत, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से। न गरज किसी से नवास्ता मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से तेरी याद से तेरे नाम से। कभी सोचना भी नहीं उससे अलग होने का।

0: ये सब खनकते सिक्के हैं, इनमें खरा कोई नहीं। यूं तो कहते हैं कि दोस्त मैं तुम पे मरता हूं, पर मरा कोई नहीं। वैसे तो सब मरने को तैयार नजर आते हैं, आज खुद गर्जी के सब प्यार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। ठीक है साहब, कुछ भी कहिए, दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको, निभाने वाले भी और रिश्ता जोड़कर भुलाने वाले भी। रफी साहब की आवाज में ये गीत सुनवाते हुए हम आ गए हैं नजदीक भाई आज के प्रमुख समाचारों के। ये गीत कौन पहुंचा रहे थे आप तक?
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारार ने दावा किया है कि एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के उन 10 ठिकानों पर हमला किया है जहां से ड्रोन स्टोर किए गए थे, जहां पर और लॉन्च किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने उन जगहों का कोई ब्यौरा नहीं दिया जहां हमले किए गए, लेकिन यह माना है कि उन्होंने अटैक किए। इससे पहले पाकिस्तान ने कल बुधवार को दावा किया था कि अफगानिस्तान से उसके हवाई इलाके में एंटर करने वाले 8 ड्रोन्स को मार गिराया गया था। तालिबान सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सिदिकुअल्ला नुसरत ने कल बताया था कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की ओर से कोई हमला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अफगान एयरफोर्स ने अभी तक कोई ड्रोन हमला नहीं किया है और जवाबी कार्रवाई का समय और स्वरूप अफगान एयरफोर्स द्वारा ही तय किया जाएगा। उधर अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के खोस्ट के गवर्नर और उनके स्पोक्स पर्सन के माध्यम से कहा है उन्होंने कि मुस्तगफर गुरबुज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले सुबह करीब 3:30 बजे हुए और गुरबुज जिले के कैंप गुल्लर इलाके के साथ साथ इस्माइल खेल और मंदोजी जिलों के कुछ इलाकों को निशाना बनाया गया। इनमें कोई जख्मी नहीं हुआ। भारत से आने वाली खबरों में बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर में भी एक लड़की के साथ सेक्सुअल टॉर्चर की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जगत सिंहपुर बांध इलाके में दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR दर्ज की जा चुकी है। अमेरिका में एक जज ने व्हाइट हाउस को 3 समाचार ऑर्गेनाइजेशंस पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाने का आदेश जारी किया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते इन समाचार एजेंसीज को व्हाइट हाउस में एंटर करने से रोक दिया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की एक अदालत ने इस पाबंदी के खिलाफ टेम्परेरी रोक का आदेश जारी किया है। इसके तहत CNN, MS नाउ और पॉलिटिको की व्हाइट हाउस तक पहुंच 14 दिनों के लिए बहाल करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया है। ग्रैंड बेस एंड्रयूज में शी जिनपिंग का रेड कारपेट और फौजी हवाई जहाजों के फ्लाई पास्ट के साथ वेलकम किया गया। स्वागत समारोह के दौरान 100 फुट लंबा रेड कारपेट बिछाया गया था और शी के आगमन के मौके पर 2 B-1 बॉम्बर विमानों ने ऊपर से उड़ान भरी। आज थर्सडे को ट्रंप और फर्स्ट लेडी मिसेस ट्रंप व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग और पेंग लियान की मेजबानी करेंगे। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 2 तरफा बैठकें होंगी। अमेरिकी और चीनी अफसरान के साथ टेक्नोलॉजी के फील्ड में नेता राजकीय रात्रि भोज यानी डिनर जो है उसमें शामिल होंगे। शी जिनपिंग और पेंग लियान व्हाइट हाउस में ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ कल एक चाय पर बैठक करेंगी और इसके बाद शी जिनपिंग और पेंग लियान ज्वाइंट बेस एंड्रयूज रवाना होंगे। कल उनकी वापसी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ओपन AI के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक वेबसाइट में घुसपैठ की है। एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्विसेज योजना की मेडिकेयर से जुड़े गैर सेंसिटिव डेटा वाले एक स्टैटिस्टिक्स पोर्टल को हैक किया है। अल्ब्रीज के मुताबिक ये सेंध जून में लगी थी, लेकिन ओपन एआई को इसकी जानकारी अगस्त में हुई और उसने 10 सितंबर तक सरकार को इसकी सूचना नहीं दी। ओपन एआई का कहना है कि ऐसा नहीं माना जा रहा है कि किसी मरीज के रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई गई थी। हेल्थ सर्विसेज में ये घटना घटी। भारत से आने वाली खबरों में दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में जेवर के पास लगी आग, 9 यात्रियों की मौत हो गई, में एक महिला शामिल थी। जेवर नया एयरपोर्ट पुलिस के हवाले से बताया गया है कि गुरुवार तड़के आज सुबह सुबह ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्री मारे गए। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष को लेकर के एक बयान जारी किया है, पॉसिबल टेंशन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद समेत अगर दुनिया भर में पॉसिबल स्ट्रगल्स को निपटने के लिए एक प्रभावी इंटरनेशनल व्यवस्था होती, कोई ऐसा बेहद अच्छा इंतजाम होता तो अच्छा होता। रूबियो ने कल पत्रकारों से कहा कि हम इंटरनेशनल व्यवस्था की उपयोगिता यूटिलाइजेशन देखते हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। और भाई, एशियाई खेलों से खबर आई है। जापान के नागोया में हो रहे एशियन गेम्स में आज भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशी बीना देवी नाओरम ने महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग की वुशु स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है। अमेरिकी विमान वाहक यानी एयर कैरियर एरोप्लेन कैरियर पोत अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के कम 8 नाविकों ने आत्महत्या की कोशिश की है, सुसाइड करने की। अमेरिकी नेवी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हांगकांग के एक पत्र से ये जानकारी मिली है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग 10 महीने पहले मिडल ईस्ट में तैनात किया गया था और वो रिकॉर्ड समय तक तैनाती में रहा। और खेलों से जुड़ी एक और खबर, भारत ने साउथ कोरिया को 8-2 से पराजित किया। एशियाई खेलों में लगातार तीसरी जीत है भारत की। हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं हम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2026 में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। हॉकी इंडिया के अनुसार भारत ने मैच के लिए पहले हाफ में 5-0 की बढ़त बना ली थी। टीम ने दूसरे हाफ में 3 और गोल किए और जबकि साउथ कोरिया 2 गोल ही कर सकी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और जर्नलिज्म की दुनिया से निकलकर अब फिर से संगीत के संसार में लौट आइए। आइए सुनवाते हैं आवारागर्दी भरा एक गीत, एसपी सुब्रमण्यम।

वो भी आपकी हुई या नहीं ये भी बता दीजिए या फिर ये चाहत ये मोहब्बत ये प्यार ये करार एक तरफा ही रहा अब आप कहेंगे आप ही ने तो कहा था कि प्यार तो होता ही एक तरफा है असली प्यार तो वही होता है जो बदले में प्यार न चाहे बस

0: Welcome to the second part of Manoranjan program on Laika Radio Network. This is Ravi Sharma with you until 1 o'clock this afternoon. और बहनों भाइयों, आज के मनोरंजन में अब समय हो गया है चिंतन का. Thought for the day, आज का विचार. आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं डॉक्टर अलका जी का भेजा आलेख. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर अलका डेंटिस्ट है, साउथ लंदन से, सटन से उन्होंने भिजवाया है. लिखती है, एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं कवि बनना चाहता हूं, लेखक बनना चाहता हूं. तो कवि ने उसको सलाह दी, पहले भावुक बन के दिखाइए, दूसरों के दर्द को, दुख को महसूस करके दिखाइए, फिर वो दर्द कागज पर उतारिए, देखना वो कविता बन जाएगी. क्या? हाँ, अरे भावनाओं का ही तो चित्रण है काव्य. और भावनाएं भी संवेदनशील. किसी के दर्द को, किसी के दुख को अपनाइए, फिर उसे कागज पर लिखिए, कविता निकलेगी. क्योंकि वियोगी ही तो था कोई पहला कवि. वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान. वो आंखों से जो निकलते हैं दूसरे के दर्द से प्रभावित होकर, वो आंसू नहीं कविता ही होती है. एक बार की घटना है ये, और ये घटना है दीन दुखियों से बहुत प्रेम करने वाले और उनके बारे में सशक्त कविताएं लिखने वाले महाप्राण निराला जी के जीवन की. सुना है नाम आपने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. जब वो लिखते थे तो कविता लोगों के हृदय में तूफान उठा देती थी. वो तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर. पीठ पीठ मिलकर हैं दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक. कैसा चित्रण है, भूख का, गरीबी का, प्रताड़ना का. एक बार कहते हैं निराला जी अपने एक पब्लिशर के पास पैसा लेने गए. जीरो रोड इलाहाबाद जो प्रयागराज है, वहां से उन्हें तकरीबन 300 रुपए मिले. उन्होंने रुपए अपनी आंटी में बांधे और चल पड़े दारागंज की तरफ जहां वो रहते थे. अब भाई उन दिनों, उस जमाने में 300 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी. रास्ते में अलोपी बाग चौराहे के पास एक भिखारिन सामने पड़ गई. बोली, बेटा बेटा इस भूखी प्यासी भिखारिन को कुछ दे दो, दे दो, दो दिन से कुछ नहीं खाया है. निराला जी छिटक कर खड़े हो गए और उसके पास झुककर पूछने लगे, माता जी कितने दिन से नहीं खाया? दो दिन से नहीं खाया बेटा. मां एक बात बताओ, तुम्हें कितने पैसे मिल जाए तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी? भिखारिन ने सोचा कि बाबू मजाक कर रहे हैं. बोली, बेटा क्यों हंसी करते हो? निराला जी गंभीर हो उठे. देखिए, आपने मुझे बेटा कहा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मां भीख नहीं मांग सकती.
1: चिंतन, चिंतन.
0: इतना कहकर महाप्राण ने अपनी आंटी खोली और उसमें से पूरे के पूरे रुपए उस भिखारिन को देकर के आगे बढ़ गए. भिखारिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ. हैरानी से बस देखती चली गई. आवाज देनी चाहिए, कंठ अवरुद्ध हो गया, आवाज नहीं निकली. ऐसे होते हैं कभी.

0: ऐसे बनती है कविता, ऐसे लिखे जाते हैं आलेख। कभी कभी हृदय भावुक होता है, वो देना जानता है मांगना नहीं, वो दूसरे के दर्द को महसूस करना जानता है किसी को दर्द देना नहीं।
1: मधुबन खुशबू।

0: योगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान ये आहें ये आंसू ये वियोग ये दर्द यही तो है काव्य कला थैंक यू डॉक्टर अलका जी चौधरी परिवार से सर्बिटन से उन्होंने साउथ लंदन से भिजवाया आज का आलेख मुझे याद आ रहा है मैंने भी एक बार सरस्वती माँ से प्रार्थना की थी कि मुझे कविता लिखने की कला में दक्षता चाहिए मैं काव्य कला की रीत ना जानू कैसे लिखूं तेरे गीत ना जानू मेरे हृदय में भरो जज्बात माँ मेरे सर पे धर दो हाथ माँ सरस्वती माँ से प्रार्थना काव्य हो लेखन हो साहित्य हो हृदय को भावुक बनाइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन की घटना आपने आज के चिंतन में सुनी और बहनों भाइयों आपको याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप सुन पाते हैं आज के चिंतन में जो गीत आपने सुना दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म साजन बिना सुहागन पहले उषा खन्ना जी की आवाज में और फिर यशुदास की आवाज में थोड़ा सा आपने गीत का ये हिस्सा सुना आज का चिंतन आज का विचार अब समाप्त होता है
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK promising that they are giving today's rate as 126.6 rupees for £1. Bharatiya Mudra mein 126 rupees 60 paise ek pound ke badle de rahe hain. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Banana function rakha hua hai.
4: Birmingham, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Dirsi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre, Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Dirsi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
5: डेजर्ट सफारी
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
6: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 0208574 8410
2: साउथ Travel at all protected.

0: दर्द में भी मजा होता है बहन भाइयों, दर्द में भी सुकून होता है, और दर्द इतना मीठा हो सकता है कि उसे बार बार सुनने को जी चाहे। ऐसा होता है दर्द प्यार का, मोहब्बत का। और आपने दो गीत यादों से झांकते हुए सुने भाई। पहला लता जी की आवाज में था, आरजू फिल्म से बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। और अभी सुना वो जब याद आए बहुत याद आए, दैट वाज फ्रॉम द फिल्म पारस मणि 1963। भाई ऐसे ऐसे गीत मैंने जैसा आपको बता चुका हूँ कि लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर ही सुनने को मिलेंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये तो बैक टू बैक संगीत के तहत आपने दो गीत सुने, और अब आगे बढ़ते हैं भाई ये बताते हुए कि एक दो अनाउंसमेंट सब आपके साथ साझा कर लें। एक तो कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%, होस्टेड बाई अनिल कपूर, एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। इसके अलावा डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। और भाई दूसरी भी एक इंफॉर्मेशन थी, वो है कि अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो भाई मर्सिडीज बेंज की ओर से हम आपको एक ये जानकारी पहुंचाते हैं, जब आप खुद का बिजनेस चलाते हो और आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, आपकी रोजी रोटी का कारण है और आपकी रेपुटेशन सब कुछ उसी पर निर्भर करता है, तो इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आए हैं अप टाइम प्रॉमिस, आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेकों फायदों का एक पैकेज है, जिसे 2400 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना और गाड़ी के रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के ख़राब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब अवेलेबल मर्सिडीज वैन्स वैन्स आपके साथ हैं। तो आज ही मर्सिडीज वैन्स जो वैन्स हैं बेंज के, मर्सिडीज बेंज के वैन्स को इस टाइटल के तहत सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानकारी दें।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
2: ये है Leica Radio.
1: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। देखिए साहब, शब्द ना भी हो ना तो ये संगीत बता देता है कि इस अनुभूति में दर्द बसा है। और भाई संगीत का थोड़ा सा रंग बदल दिया जाए तो पता चल जाता है कि ये वियोग का नहीं, ये मिलन का संगीत है, ये बेबसी का नहीं, खुशी का संगीत है। देखिए

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra podcast update.
3: आपको बता दें भाई, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड नंबर 35 आ चुका है और जरूर देखिएगा। आप अपने रेडियो स्टेशन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके संघर्ष के बारे में, इसकी कामयाबियों के बारे में जानना चाहते हैं तो टाइटल है राज बदन यानी हमारे सीईओ, पांच साल का शोकेस, होस्टेड बाय रूबी रजा एंड डोनी ब्रेस्को। राज बदन टॉक्स टू रूबी रजा एंड डोनी ब्रेस्को अबाउट स्टेपिंग इन टू द रोल ऑफ सीईओ of one of Britain's largest station radio networks, the Laika Radio Network, and his journey behind the title. भाई क्या बनाना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते थे और क्या कुछ बना पाए हैं और आगे आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या चेंजेस हैं वो ला चुके हैं आपके Laika Radio Network में, जानने के लिए, देखने के लिए must watch title Raj Badan 5 years showcase on Laika Extra. और भाई Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Laika Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk.
4: ये है लाइका रेडियो।
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फेल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
6: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
7: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
8: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
9: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
10: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Milton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

जगदीश का कहना है दो गीतों ने तो रुला दिया आज, दोनों गीत वापस कर दीजिए, हम आपको हंसाने वाले और दे देंगे, पर कहते इतने प्यारे हैं हमने रख लिए।

0: और भाई खनकाने वाले डटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे दोपहर बाद एक बजे तक इस प्रोग्राम के साथ। अभी अभी आपने गीत सुना चूड़ियां खनकी, एंड दैट वाज संग भाई, किस कौन गा रही थी इस गीत को? मेरा ख्याल है इस गीत को गा रही थी कौन, साधना सरगम। हाँ, साधना सरगम गा रही थी भाई, साधना सरगम और सखियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। और अब भाई आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के इतिहास में कई बातें दफन है। एक तो भाई रिजर्वेशन को लेकर के गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच एक बहुत बड़ा इशू था जो सोल्व हुआ था आज के दिन। और गांधी जी जो है जातिवाद को बढ़ाना नहीं, जब बंटवारे को ख़त्म करना चाहते थे, सभी जातियों के एक उसमें पिरोना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब जो है वो रिजर्वेशन के पक्ष में थे। और दोनों नेताओं के बीच बात में आज ही के दिन सहमति हुई थी आज़ादी से पहले। 24 सितंबर को जिन लोगों के जन्मदिन पड़ते हैं उनमें एक बड़ा प्रमुख नाम है राष्ट्रवादी महिला भिखाजी कामा। भाई भिखाई जी कामा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थी, मैडम भिखाई जी कामा, बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। 24 सितंबर 1861 में जन्मी थी और 13 अगस्त 1936 में उनका निधन हुआ था, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और भारतीय इतिहास में उनका नाम जो है वो शामिल है, उन्हें याद किया जाता है इस संघर्ष के लिए। उनके अलावा और भी कुछ लोगों के जन्मदिन है आज। भाई फिल्मी दुनिया में देखे तो राजेश खट्टर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, दिल्ली में जन्मे थे 1966 में। क्रिकेट को देखें तो महेंद्र अमरनाथ का जन्मदिन है आज, 1950 में जन्मे थे 24 सितंबर को पटियाला में। और भाई ये अमरनाथ फैमिली से लाला अमरनाथ के बेटे राजेंद्र अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ के भाई। महेंद्र अमरनाथ 1983 की वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा थे और बड़े जाने माने खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के अपने दौर में। और साहब आज जन्मदिन मनाने वालों में हमारे हरियाणा की एक कांग्रेस नेता भी हैं, कुमारी शैलजा। शैलजा कुमारी से तो कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन हंसना नहीं, उनके पूज्य पिताश्री से संपर्क रहा, चौधरी दलबीर सिंह, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता रहे थे अपने समय में। और एक कार्यक्रम में हमने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया था रोहतक में, मुझे याद है भाई, बहुत पुरानी बात हो गई है। आज जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम असित सेन साहब का भी है, फिल्मी दुनिया में भाई असित सेन, वो कॉमेडियन नहीं, डायरेक्टर असित सेन, बंगाल में ढाका में जन्मे थे आज ही के दिन 24 सितंबर 1922 में। और भाई आज अगर आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, पैसे भिजवाना चाहे तो रेट अब भी अच्छा चल रहा है। एक पाउंड के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 126.6 रुपीस, 126 रुपए और 60 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टीएनसी अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: It's back, it's bigger and better.
1: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
1: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
1: For store bookings, call 07803-240580.
2: Or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
3: Hi, Hi, Vishpit Naga here from Leica Radio. Come along to the Dubai Property Expo with Danube Properties. This weekend, that's Saturday the 26th and Sunday the 27th of September at the Marriott Hotel in Leicester. I'll be there this Saturday until 4 p.m. Exclusive properties, a matched lifestyle and a brighter future. So join me at the Dubai Property Expo, Leicester. Your Dubai journey starts here.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: हमारी रक्षा है वो
6: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
7: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
6: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
8: For 15 years, Jannan has been part of your story across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us, for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: From Yardley to Walsall. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio.
10: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहनों भाइयों, Artist of the Week इस सप्ताह है कंठ कोकिला शारद पुत्री महान गायिका कविता कृष्णमूर्ति

प्यार करते हैं बस यही कारोबार करते हैं वो ना आएंगे हम ये जानते हैं फिर भी हम इंतजार करते हैं

आर्टिस्ट ऑफ द वीक कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम. अब डोंट फॉरगेट द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे द 1st of November. Brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office and exclusive radio partners like our radio.

0: आप भी इतना समझ लीजिए ये समझाने के बाद कि भाई इंसान मजबूर हो जाता है दिल के आ जाने के बाद। याद दिला दें आपको भाई लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में माया फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। और इस गीत सुनकर ये क्या लिखा आपने गुरुदेव गांजा जी, लिखते हैं शर्मा जी सब लोग बीवी से डरते हैं। हम तो नहीं डरते भाई, खुल के अरे कहीं सुन तो नहीं रही होंगी रेडियो को। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है साहब, और अगर डरते हैं तो अपनी बीवी से डरते हैं, किसी और की बीवी से नहीं डरते हैं।

शाख से टूट के गुंचे भी कभी खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कभी मिलते हैं, मिलते हैं साहब, रूठ कर वो हमें भूल जाने लगे, क्या करें वो और भी ज्यादा याद आने लगे। जितना उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं वो राधी

बेटी कारणा जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनते रहिएगा नरेंद्र दास पोपट हमें फ्रैंकफर्ट में सुन रहे हैं कहते हैं आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करता थैंक यू

जमीन पे सब्जा महक रहा है लहक रहा है फलक पे बादल धुआं धुआं है मगर जो दिल के मिजाज पूछो तो हमारे दिल का अजब समा है ना ऐसे आने की आरजू थी और ना ऐसे जाना हमारी खुद थी लेकिन जाना होगा क्योंकि बाली भाई स्टूडियो में आ चुके हैं इजाजत दीजिए हैव अ सुपर्ब डे बाय बाय

0: फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का 1989 अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण
1: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Hangama hai kyun barpa? Thodi si japeel hi
3: hai. Aapka naya station, Laika Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
2: Door bahut mat jaiye.
0: डेढ़ मिनट के बाद इसका मुखड़ा शुरू होता है गाने का हमदम मेरे the actual title of the song starts after 1.5 minutes
2: कोई लूट ले रहा हमें प्यार हमारा
0: the genius of Opie Nair

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. From King's Heath to Smethwick, Laika Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Laika Radio Midlands. This is Laika Radio across the Midlands.
1: एक खूबसूरत हॉल है लंदन में और इस हॉल का नाम ऑफ कोर्स द फेमस हॉल विच इज नगरेचा हॉल हरिबेन बच्चूभाई नगरेचा हॉल. जब भी गणपति की सीजन आती है, नवरात्रि, दिवाली, जब भी कोई भी सीजन आती है तो वहां पे चहल पहल मचती है और सेलिब्रेशंस होते हैं. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज वहां पे मातम मनाया जा रहा है, शोक सभा ऑन थर्सडे 24 सितंबर. मीटिंग द फैमिली फ्रॉम 7 to 8 PM, प्रार्थना एंड स्पीचेस 8 to 9 PM. वेन्यू इज हरिबेन बच्चूभाई नगरेचा हॉल, 204-206 लेटन रोड, E15 1DT. बिकॉज हमारी प्यारी उमी बेन्स हस्बैंड शशिकांत रणछोड़दास राडिया पास्ड अवे ऑन 21st of September 2026. हु वाज बोर्न इन मरागुआ केनिया. वी आर गोना पे ट्रिब्यूट. सो सॉरी, दैट्स ऑल आई हैव टू से टू द नगरेचा एंड द राडिया फैमिलीज. Om Shanti with this song.
0: This is Laika Radio across the Midlands.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Of course, हमने एक birthday announce करनी थी, and it was a beautiful moment for this particular song to be dedicated to the birthday girl herself. And birthday है हमारे प्रतिबेन. Oh yes, प्रतिबेन मकेचा from Wimbledon. क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया. एंड पन्ना लखानी जी ने पिनर से मुझे बताया कि उनका बर्थडे है. सो हैप्पी बर्थडे टू प्रीति बेन, एंड आई विल प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू एंड बात करूंगा बाद में. एंड गेस व्हाट, अमन त्रिखा इज कमिंग ऑन एयर टुमारो. वूहू.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।